उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो, बात वही है। अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है, डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज, इज ओनली वन। एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कौन है, दूजा कहता है कि मारी मामी है, कौन है, तारा मामा री बू है, कौन मारी माँ है, मामी नहीं कहना, एक है मारी दादी है, एक है मारे माँ है, दूसरे कहता है कि मारी बेटी है, तीसरे कहता है मारी बहन है, और दूसरा कहता है मेरी बुआ है, दूसरा कहता है मारे काकी है, आंटी नहीं ये बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी आड़ी क्यों गंदी गंदी बात करो, है काका काकी भाजी भाजी वो करो, लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, मारी पोती है वो महिला एक ही है क्या, नहीं एक ही महिला है, नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया, दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही। सिमिलरली गॉड इज वन विच गॉड हैज नो नेम एंड ऑल आर टॉकिंग अबाउट अ गॉड फॉर वननेस। सो दिस एजुकेशन, the ethic and spiritual education we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है, नहीं बाप जी हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है, उन्होंने ठा तो है को नहीं, बाबूजी मारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ानी, अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरा ने नौकरी नहीं लागे, नौकरी पड़ी खाडा रे माए। मनुष्य बनाओ बच्चे को, आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, ने अंग्रेजी पढ़ी ना रोता फिर झाड़ू लगावाने को नहीं रखे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है, तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पे अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न क्यों अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी है, हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा बेरस तो पूछ कर जानो के स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं के राजस्थान में जाऊं के मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कह रहे मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो, तो तुम लोग

अंग्रेजी पूरी ही क्यों भी नहीं थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी बोल गया। हमारी मातृभाषा है, उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेशी नहीं, रेशी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रे नी ने रेशी सुथारी, आ होनारी परी जई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी। के रावण, तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है। रेसी सुथारी थारी है, वो ही रहूंगी है। हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन केवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी के रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो। बुद्धि ज्ञान, उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो, सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I ask someone address, I have very wish the direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path, direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. Or महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई गाड़ी चलाओ, कॉन्सेंट्रेशन करो। तो वो क्या, कौन सा स्टेशन? अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहे हो नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी। सही बात है कि नहीं? इसलिए दैट्स वाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज। दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप्ड ऑफ दैट divine who gave you the knowledge. Then is the birthday of Bhagwan Vedvyasa, and every disciple adores, remembers to keep this living culture. So Guru Purnima is a festival of the culture, to protect the culture is called the living culture. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म। व्हाट डज इट मीन? व्हाट मीन्स द लिविंग धर्म? वन मदर गिव्स ए बर्थ टू ए चाइल्ड, इट इज द धर्म ऑफ द मदर टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, इज हर धर्म, वो सनातन धर्म है। ए वन ट्री गिव्स यू फ्रूट, इट इज द धर्म ऑफ द फ्रूट ट्री टू गिव द फ्रूट। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है, वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है। और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है। कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में, स्कूल के मास्टर आपके गुरु है। इसलिए

Varsavi system will stop, block. But the Sanatana Dharma guru and disciple will ever and ever will last. That's why it's called eternal religion of Sanatana. The relation of the mother, child, husband, wife, nature, etc., etc. Therefore, the Guru Purnima has a great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, वो एक की जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी वही, इसीलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, दैट्स कॉल्ड लिविंग फेस्टिवल. गुरु पूर्णिमा इज लिविंग फेस्टिवल, जिंदा. और सब संप्रदाय चली जाएगी लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का नाता है. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद. आप आए, यू केम ऑल, वेलकम. नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत. तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा. कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है. तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना, के बाबू जी कमरों के कमरा तो गणेश जा हुई जा, कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है. पर माँ कोई नाग देवता बैठा वेला तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है, जको ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो. और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना. अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा. कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कह के बाप जी ओ अटे बैठो तो. इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है. भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना. सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे, तो कार्यक्रम चलता रहेगा. अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग. विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड. इफ यू वांट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी वेबकास्ट एंड भजन्स वेन एवर यू लाइक. यू कैन पुट ऑन योर television and you can see or hear the bhajan. Bol Sanatan Dharma ki jai, Sat Guru Dev ki jai.

0: राधे भगवान सिद्धिप नरे महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरु देवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरु देवा की जय।
1: You do it, Puspa. One version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

0: की जय। राज्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

जय देवादिदेव श्रीदेव पुरुष महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

लक्ष्मी बीरबाई की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय।

राधे भगवान श्री नर महाप्रभु जी की जय। श्री अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव श्री देवपुरी जी महादेव की जय।

श्याम जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय, सत गुरुदेव की जय।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय। सदेव पुरी समदेव की जय। श्री हिंदू धाम समर मन वनम जिसर गुरुदेव की जय। विश्व गुरु मा मनलेश्वर परमांश स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

की बोले श्री प्रणाम भगवान की जय श्री देवपुरी समादेव की जय श्री रेवत सिंह जी की जय।

श्रीदीप नारायण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी महात्मानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म की ओम शांति।

ओम श्री लखपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवनपुर जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी सतगुरुदेव भगवान की जय। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम एंड गुड इवनिंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर वाचिंग द लाइव वेबकास्ट टुडे फ्रॉम द होली लैंड इंडिया राजस्थान जारन। एज विश्व गुरुजी हैज सम वर्क एंड ही इज इन अपस्टेयर्स सो आई स्टार्टेड टुडे। So, let's take for example, if we look around us in the nature and we just see a flower, in like in Pushpaji's garden, we see a flower and the flower is blossoming, it has a good smell. For example, we take roses or jasmine flower or any type of flower. When you look at it, it looks beautiful, but it takes time to grow. It's beautiful, it's white, it smells nice, everything is so beautiful. So

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव श्री देवापुरीषा महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सामना श्री परहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One. Satya Guru Raghavan.

हिंदुधर्म सम्राट परहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतम।

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चिदुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की जय। मीन्स ग्लोरी, जय मीन्स विक्टोरी, सो एंड जय मीन्स लॉन्ग लाइफ। सो वी ऑलवेज सेड द ग्लोरी विक्टोरी ऑफ गुरुदेव, विक्टोरी ऑफ द राइट हाउसनेस, द धर्मा, सनातन धर्मा।

0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: गुड नून, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी, नाइस टू सी यू, ब्यूटीफुल डे, सनशाइन।
2: यो नपोट, यो रेगेट, मिंदेकित köszöntök, jó látni benneteket, süt a nap.
0: The message is coming from our Yoga and Daily Life retreat in the Vip Hungary.
2: Üzenetünk a joga mindennapi életben rendszer visszavonulásáról, Vépről, Magyarországról jön.
0: In these 2 weeks we have very beautiful programs.
2: 2 hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
0: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
2: Yoga és a védek tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
0: It is a science. It has been proved.
2: Ez egy bizonyított tudomány.
0: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc., is they have forgotten or they lost many things.
2: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
0: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
2: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
0: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
2: Ez a négy, az ahar, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
2: Vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
2: És hogyan viselkedsz.
0: How you are living with someone.
2: Hogyan élsz valakivel.
0: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy goes in your body.
2: Minden érintés vagy ránézés átveszi az energiákat.
0: Ahar, vihar, achar and vichara. After comes the vritti, the thoughts.
2: Utána jönnek a vrittik, a gondolatok.
0: So from the food, from the company, from the place where you go, and that according to that the thoughts comes.
2: Étel, a társaság, a hely, ahova mész, meghatározza a gondolataid.
0: You have to control your horse.
2: Uralnod kell lovaidat.
0: And we have 10 horses of our senses.
2: 10 ló van az érzékszerveknek.
0: And you have to control them.
2: Ezeket kell uralni.
0: Positively, not negatively.
2: Pozitívan, nem negatívan.
0: But you have to purify your vrittis, your thoughts.
2: Meg kell tisztítani a vrittiket, gondolatokat.
0: That's it. Well, we have here very learned acharya, the pandit.
2: Itt van velünk egy nagyon tanult acharya, pandit.
0: He studies Sanskrit.
2: Sanskritot tanult.
0: And he is one of the best in the Karamkanda.
2: És ő az egyik legjobb a Karamkandában.
0: Now, many you don't know what's Karamkanda.
2: És nem tudjátok mi ez.
0: We know the karma.
2: Tudjuk mi az, hogy karma.
0: But what is the kand?
2: És mi az, hogy kand?
0: Kand means disaster.
2: A kand az katasztrófa.
0: If you make karma and kand.
2: Hogyha a karmát és kandot végzel.
0: Or there are different chapters.
2: Vagy vannak fejezetek.
0: So there are many different things.
2: Különböző dolgok vannak.
0: So our Acharya Triveda Kapila.
2: Acharya Triveda Kapila.
0: Is with us.
2: Itt van velünk.
0: And I think he should tell about something. The Karamkand.
2: Elmondja, mi az a Karamkand.
0: And the effect.
2: És annak hatásai.
0: Of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
2: Puják és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
0: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi Panditji.
2: Köszöntelek benneteket és Kapil Trivedi Panditjit.
0: Yes, Panditji, you are on the line. floor is yours.
2: Pandici, tiéd
0: a Bolo.
2: Szó.
1: सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन दीप नारायण भगवान की जय सदगुरु देव की जय आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं तो गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन प्रणाम गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से

0: परिवर्तन आ सकता है। आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के चरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं,
1: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग, वी वेर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस, अनुवाद करता हूं। सो द पंडित जी सेट
2: पंडित जी आसमंता
1: फर्स्ट ऑफ द एडोरेशन टू अवर गुरु परंपरा गुरुदेव
2: गुरु परंपरांक फेस्ट के तिस्तरेतेत
1: देन सेड वी आर ऑल ब्लेस्ड वन
2: ते मंत हज मिंद आदोत्तक वजुंग
1: दैट वी आर ऑल हियर टुगेदर
2: एजुत लेहतुंक इत
1: एंड दैट वी आर हियर इन द शेल्टर ऑफ द गुरुदेव
2: हज गुरुदेव हालेकाबान लेहतुंक
1: सेम टाइम दैट He mentioned about 8.4 million different kind of lives.
2: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
1: But finally we got a human life.
2: És annak a végén az emberit.
1: Human life should be very pure.
2: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
1: You have to come to the God as pure you were.
2: Tisztán kell jönni Istenhez.
1: So he said we are lucky.
2: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
1: And we are going to have some havan, yagya, puja.
2: Havanát, yagyát, pujat fogunk gyakorolni.
1: And so let's go what he said in short sentences. ठीक है, थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताएं।
0: आप और सब हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे। यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं।
1: वाइल मेकिंग द यज्ञ
2: यज्ञ
1: सेरेमोनीज वी विल हैव ए इजी एक्सेस टू गॉड
2: ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
0: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है। अगर उस पूजन को, उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से, सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती हैं।
1: इन लाइफ मेनी टाइम्स देयर इज अप एंड डाउन
2: életben sokszor fe és lefelé szállunk.
1: देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस different kind of situations.
2: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
1: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
2: Yagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
0: ये एक प्रकार का विज्ञान है। यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, कोई साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है, उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं।
1: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
2: टू द मैन
1: वैदिक साइंस
2: वैदिक टू द मैन
1: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र

0: As I told before, he mentioned.
1: A Vastusrasra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
0: Exactly the yagya ceremony must be done in proper measurement.
1: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
0: And in the proper scale. East, west, north, south.
1: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
0: And that fireplace for the yagya is like the mouth of the god.
1: A yagya tűzhely az olyan, mint Isten hegye.
0: And what the mantras is coming like from that supreme.
1: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
0: And how you will think and you will offer your ceremonies there, that will become fruitful for you, liberating you.
1: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
2: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं, मंत्र जो हैं वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं। अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है, और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
0: The scriptures, the Vedas, Upanishad, etc. Their mantras, which influences the devas.
1: Iratok, a Védák, Upanishadok mantrái hatnak a dévákra.
0: Invite them.
1: Behívja őket.
0: And these mantras, this ceremonies is perfection by those scholars, so called the pandit.
1: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
0: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yagya is.
1: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a yagya van.
0: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
1: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
0: So this is not only just what we call a mantra chanting. It is the science. It is sanatan.
1: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, sanatan.
0: It is eternal.
1: Örök.
0: Unchangeable.
1: Megváltoztathatatlan.
0: It is the truth.
1: Az igazság.
0: Is that scriptures.
1: Ez van az iratokban.
0: That granthas.
1: A grantákban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है, तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें, ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है।
0: सो सच्चे अपॉर्चुनिटी, सच्चे ओकेशन, such a situation that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness, and one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: A rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahot kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanúja a mantrádnak.
2: Ek mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
0: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
1: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.

कृपा। ध्यान करने के योग्य गुरु जी की प्रतिमा है, गुरु जी की मूर्ति है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान, गुरु की जो कृपा है वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। आप सब एक बार बोलिएगा सद

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुति।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वोदोलात
0: ग्लोरी
2: दिचोइतेस
0: टू डिवाइन मदर
2: दिश्तनी अन्यानक।
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

0: विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय।

नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ती पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।

know how to treat, how to judgment. He said, okay, then let's eat. But she said, you know, doctor told you that at least 2 weeks you should not drink cold and no any like this ice cream, etc. When your throat will be okay, then of course you can have ice cream. Yes, husband disappointed. But she's right. Went home. Went home, no ice cream. Warm water drinking. No cold drink. After 1 week, he had a desire, ice cream, ice cream. So, the level of our consciousness is different. Sushupta, Jagrata, Sushupta, Swapna, these are the three levels of the consciousness. Hum jagrat hai abhi. Jagrat, we are awakened and we see what is happening here, left and right. But then we go to the sleep. Now, sleeping, it's not easy to know your sleep. क्या आपको पता है कि आप जागृत अवस्था से सुसुप्त अवस्था में किस घड़ी किस सेकंड में आप बॉर्डर को क्रॉस किया है फ्रॉम विच सेकंड हाउ डिड यू केम टू द स्लीपिंग लेवल यू वेर अवेकन एंड हाउ डिड यू स्मूथली enter into the sleep. If you can research this and become aware about that, how you are sleeping, that second, this is the second ki baat hai. They said, the driver said, micro sleep. Micro sleep se accident hota na. Thodi si aankh ki jokha aaya, or accident ho gaya. So it is from awaken to the sleep. Just we go in the bed, put our head on the pillow and said, now I will sleep. But when did you come to the sleep? This is the work of the yogi. Achha, okay, doesn't matter. Aap aage. गहरी निंद्रा के अंदर हैं आप सडनली यू आर इन शिकागो फ्रॉम न्यूयॉर्क ड्रीम स्वप्न सो हाउ डिड यू वेंट आउट ऑफ दिस फिजिकल बॉडी थ्रू द एस्ट्रल बॉडी यू आर इन द शिकागो इन द टेम्पल ब्यूटिफुल न्यू टेम्पल एंड यू आर डूइंग आरती एंड एक्सेट्रा Swapna. How did you went this Amara Sukshma Sharir, Stul Sharir se bar kaise nikla? Aur kahan chala gaya, kis speed se gaya? Kahan to Chicago aur kahan New York? Aur New York ke andar mein bhi Queens aur Queens ke andar bhi Shiv Shakti Mandir. और शिव शक्ति मंदिर के अंदर भी ऐसे देवता बड़े महापुरुष ईश्वरीय विभूति हमारे हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज और आशीर्वाद दे रहे सभी को पाटी जी देखिए मिराकल्स बट नाउ यू आर इन शिकागो कैसे गए हाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू टुक अब क्या होता है कि मच्छर काटता है सडनली मस्किटो बाइट्स यू यू वेक अप विद इन नो टाइम शिकागो से यहां किस स्पीड से आप आए और जागृत हो गए स्वप्न से जागृत सो योगा समाधि गेटिंग ए Higher consciousness in samadhi, first you have to mastery
awaken.

0: जागरण स्लीप एंड ड्रीम है, जागृत सुषुप्त एंड स्वप्न। स्वप्न, स्वप्न क्या है? स्वप्न इज अवर रियलिटी, द ड्रीम इज अवर रियलिटी। इट इज दैट रियलिटी विच वी कैन नॉट रियलाइज एंड वी ड्रीम एंड वी ट्राई टू फुलफिल अवर डिजायर्स थ्रू द ड्रीम। यस कमलेश जी, सही बात है ना। अब क्या होता है कि वो सज्जन जिसको आइसक्रीम खाना था, रात को आ गया स्वप्न जोर से, ओ हो महाराज क्या कहना है, इतना बड़ा कटोरा भरा हुआ आइसक्रीम जिसमें पिंक है, येलो है, व्हाइट है, छोटे छोटे लड्डू की तरह। सो नाउ ही इज ड्रीमिंग इन अ नाइट। हिज वाइफ सेड इन हिम इन द ड्रीम, डार्लिंग सेड, नाउ यू आर हेल्थी, लेट्स गो एंड हैव आइसक्रीम। He said, oh my dear, thank you, I will pay you today ice cream. She said, let's go. He is dreaming. Now they went to the shop. They sit there on table chair and order the ice cream. Bowl, very big, beautiful bowl. Can you imagine, children? Ice cream and very nice spoon, silver spoon, that's a very expensive shop. And now wife said, enjoy. What? Enjoy. My dear, the joy which you want to enjoy, that joy is not that enjoy. The joy of that enjoy is less than the sorrow of that joy. So the enjoy which you want from that joy of the enjoy is less than the sorrows of the joy. Now he takes the spoon, ice cream, and his spoon comes near the lips. And what happened? Alarm baj gaya. Hari Om. In the dream, ice cream comes close to his lips and alarm ringing. Kya ho gaya? What happened? Woke up. Dream is gone. Now what happens? He is so disappointed. And wife is sleeping, snoring. Oh, Ram, Ram, Ram. Now, when even in the dream you could not fulfill your desire, you wake up. This is a more painful, more disappointment. We disappoint. What happens? That desire which we could not fulfill even in our dream, it goes to the subconscious. And it dwells in subconscious for a long time. Again, you try to eat ice cream, but you cannot. Again, you got a cold and you are a good singer. And your master who is teaching you singing, he said, no, for your vocal cord is not good to eat ice cream. Oh God, again. So, slowly, slowly, what happens? That desire comes through the dreams and goes back and comes. It went to the unconscious level. Now, husband, he loves his wife, but suddenly something happened. He can't go with her shopping. And whenever they go outside together, they are quarreling and comes back home. So what happens? They go to the psychiatric doctor. And what doctor said? Oh, you are, he's a psychic. Both husband and wife comes at home, looking in the mirror. I'm psychic. Yes, doctor is right. When doctor don't know exactly what is the cause in this, then it's very easy to say it is a psychic. When the bhakta comes to Guruji and tell Guruji, I have this samasya, this problem, to Guruji kahenge, haan, achha hai, but it is your karma. Wo karmo pe dal dete hai, are you, how to get the chuti, the psychic? What is a psychic? Psychic is that kind of emotion which you could not fulfill, and it is in your unconscious level, and now that has lost the form. If you know what is the cause or reason, you can solve your problem, there will be no psychic problem more. So they went to the psychiatric treatment, to psychologist, and they were analyzing every day, coming once a week, one day, and they were asking what you did and what you did not, and this and this. And one day, one point came, and that point came about ice cream. And his wife said, yes, I prohibited my husband few times not to eat ice cream. Do you remember? He said, yes. Yes, you did give me ice cream. Yes, you were dreaming. He said, yes, I was dreaming. Then the psychologist said, okay, finish today's. Our talk is finished. I would like to go with you for a little bit in the market. Let's go. And he lead them to the ice cream shop and sit there, and all three of them said, let's enjoy the ice. They ate the ice, and he was so happy, no anymore depression. So this is our mind. Therefore, yoga is that kind of science of the body, mind, and consciousness. So the mind. So Kundalini, Ida, Pingala, Sushumna, and the fourth one is called Vajranadi. Vajranadi begins from the small and big toe. Vajranadi controls our immunity in the body. Vajranadi controls our Ida, Pingala, Sushumna. Vajranadi controls our heart, that we don't get a heart attack, and also brain hemorrhage. Vajranadi begins from the big toe and second toe, and it goes through and is supporting the Sushumna Nadi. Like when we build a building and we have earthing cable. So Vajranadi is like an earthing, so there is no any bad things, attack happens to our body or mind. And therefore, you have to practice those certain postures of yoga that you can avoid such accidents. Mind. Let's come to the man. Man kya hai? Man lobhi, man lalchi, man chanchal. Man chor. Man ke mate mat chaliye, ghadi palak, man aur. Man lobhi, man lalchi, man chanchal, man chor. Man ke mate na chaliye, ghadi palak, man aur. Mind is a greedy. Man lobhi, man lalchi. Mind is full of the desires. Man chanchal, mind is restless. And man chanchal, man chor, and mind is also the thief. No? Chori kari data hai. भगवान कृष्ण भी उसको नहीं रोक सकता है, चोरी करने में मन मक्खन चोर देता है। पता है भगवान को कि मक्खन चोर कर दिया और हमारी मैया को जाकर के वो सभी शिकायत करेंगी। तो मन चंचल, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चाले, डोंट फॉलो योर माइंड, क्योंकि माइंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। दैट्स इट। व्हाट इज अ माइंड? मन का देवता चंद्र, दैट्स वाई बिसाइड मी हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज। देखिए वो हमारे देवता है, ही इज कंट्रोलिंग। इसीलिए तो ऐसे महान पुरुष पास में बैठते हैं तो हमारे को सावधानी से बोलना पड़ता है। एवरीथिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइंड इज द मून, एंड मून इज एवरी डे व्हेन मून कम्स आउट और मून राइजेस नेवर इक्वल। चंद्र हमेशा एक सरीका नहीं आता है, घटता बढ़ता रहता है। वैसे मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है, यही मन का धर्म है, क्योंकि मन चंद्र से मिला हुआ है। एंड मून मीन्स इमोशन, इन मोशन, यू आर ऑल द टाइम्स इन द मोशन, इमोशन, एंड इमोशन मीन्स वाटर। सो चंद्र जो है पानी का प्रतीक है, और वो जल जो है पानी वाटर, वो वाटर इज चंचल मूविंग, देर आर द वेव, सो यू आर इन द मोशन इज द इमोशन। बट वॉट काइंड ऑफ अ मोशन यू हैव, समटाइम इज ए हॉरिकन, अरे वाह, फ्लड, राजा योगी अग्नि जल, जिसकी उल्टी रीत। राजा योगी अग्नि जल जिसकी उल्टी रीत। सावधान से परशुराम जी कह रहे हैं कि थोड़ी देखे प्रीत, इनसे आप ज्यादा दोस्ती मत करना। राजा भी ठीक है, कभी होते होते वो लगा देता लात। हाँ वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे, हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे है। जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था या टेलीफोन भी नहीं मिला था। ये बातें होती है माइंड। नाउ व्हाट इज द माइंड? सो माइंड हमारा जो है, माइंड इज लाइक ए कैमरा, इज गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग टू द सबकॉन्शियस। एंड व्हाट इज द हिडन रिटन इन द सबकॉन्शियस ब्रिंग्स अप एंड गिव्स टू द कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट, बुद्धि। एंड व्हाट इज ए बुद्धि? बुद्धि का धर्म क्या है? बुद्धि का धर्म है उसका जजमेंट देना। सो इंटेलेक्ट गिव्स द जजमेंट एंड माइंड ब्रिंग्स एंड गोज, देयरफॉर माइंड हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज ओनली कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग। That is a mind. Intellect is giving judgment, but viveka, that is which leads us further. So yoga, asanas, pranayam, chakras, muladhar, swadhisthan, manipur, anahat, visuddhi, agya, bindu, or sahasrar. These are the 8 chakras, which is very important in our body. So yoga अनंत है, अनंत हरि कथा। साथ में आता है आसन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, तो आसन कई प्रकार के आसन कहलाते हैं। ये महाराज श्री का जो ये गद्दी बिछी हुई है, इसको भी आसन ही कहते हैं। महाराज जी आपके आसन पे बैठिए, वो भी आसन है। आपका आसन कहाँ लगेगा, रात को सहन कहाँ करोगे, वो भी आसन है। और पोस्चर्स जो है वो भी आसन है। आसन की परिभाषा बहुत कुछ है, लेकिन मेडिटेशन करते समय काया स्थैर्यम, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, फिर मेडिटेशन होता है। ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है। गिलास इज मोशनलेस, द लिक्विड इनसाइड इज ऑल्सो मोशनलेस, बट एज सुन एज आई टेक, ग्लास इज मूविंग, लिक्विड इज मूविंग। सिमिलरली इफ आवर बॉडी इज कंफर्टेबल एंड मोशनलेस, आवर माइंड इज ऑल्सो स्टडी, संकल्प विकल्प के अंदर में धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आता जाता है, फिर मन मेडिटेशन हो जाता है। तो दैट्स अ लॉन्ग वे आसन। अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो स्वामी जी कहेंगे बाबा जी को माइक दिया और पता नहीं कब तक पकड़े रहेंगे। तो अब बस हो गया पूरा। धीरे से आपको कुछ बताता हूं, सभी बैठे हैं। अरे आए तो खाली बातें करने से कोई भूख थोड़ी मिलती है, मिटती है भूख, मिटती क्या बातों से भूख नहीं मिटती है, बात करने से पेट नहीं भरता है। टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग, टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग कंपेयर्ड विद द ग्रेम ऑफ प्रैक्टिस। तो खाली बातें करते जाओ, बातें करते जाओ, पेट नहीं भरेगा। अरे कुछ खाने को तो दो, एक भी चना दे दो तो कम वो पेट में जाएगा, तो कम से कम वो तो थोड़ा काम करेगा ही। भूखे को बताते जाओ कि हाँ श्रीखंड आ रहा है, ओहो हलवा आ रहा है, पूड़ी आ रही है, और क्या आ रहा है, अरे समोसे आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, अरे जलेबी भी बन रही है। वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह, लेकिन आया क्या, कुछ नहीं आया। डपोट संघ का नाम सुना आपने, आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना? महाराज जी आपने सुना?
1: नहीं अभी तक नहीं सुना,
0: सुना दूं? हाँ देखिए ये भी तो बात है, हमारे मारवाड़ में, गुजरात में, हिंदुस्तान में कहते हैं डपोट संघ, कावद है कि नहीं? तो डपोट संघ की बात कर देता हूं, फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा, ठीक है? एक आई एम ट्रेलिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कॉमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड। एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे। समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है, शिव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः,

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं, ये शंख इतना चमत्कारिक है। ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है, आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मिला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकहियों चारी। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकहियों चारी। और एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट में है, तो दोस्त के वहां गया। तो दोस्त कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहां चले गए थे, कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा शंकर दादा मर गया क्या? हाँ मर गया बापू, तो सु गया शंकर दादा ने, सु कही है लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा, अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे हैं क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के 8 और मैं 9, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आकर के वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया, और वो जो नकली से लेके आया उसको उसके धोझोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंख भगवान कराओ ना, क्या कराए। और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे, और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए।
भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका शंख? अरे बेटा, तेरा शंख वो चुरा गया, तेरा दोस्त, असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा शंख देता हूं। अरे वो क्या करता है शंख? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा, कि वो क्या है भगवान, कि मांगना 1,000 रुपया तो वो कहे 1,000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है, शंख बोलता है 1,000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो, के लाओ देओ, कि क्या धक्का दे, धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना, अरे तू क्या नहीं दे रहा है कि नहीं, मेरा नाम है डपोल संत। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक, कि यह ऐसे कैसे हो सकता है, कि देखिए हे शंख भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंख देव कहते, अच्छा भक्त आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा, 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ, 10 सोना आ जाएगा, कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था भगवान, उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये शंख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए, तो बोला कि भाई अब तो कोई शंख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया, और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले दे भाई? कि हाँ दीजिए, कि क्या धक्का दूं? अरे ये क्या है, कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है डपोल संघ। तो तब से डपोल संघ बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता है, क्यों साहब जी? तो डपोल संघ जो था आ गया, चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल संघ वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो he went to the beach, was sitting near the ocean, and he was singing Shiva's name, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Shiva appeared, said, Bhakta, my devotee, bless you, what do you want? He said, I want money, I want this, I am very poor. So Bhagavan said, okay, I give you these coins. And whenever you want something, tell this cons, make puja, clean, flowers, incense, etc. And then you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you, Lord. Thank you, thank you. He went. On the way, he had one friend. He stayed overnight there. And what he told the friend, what is this?
So in the night, the friend took away

और दो। अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और कैहनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए, घुमाए, एक श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए।

और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थोड़ी को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट एंड इनहेल अप गुड 10 टाइम्स श्वास लेना सिर को देखिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए जालंधर बंद आकाशी मुद्रा और जालंधर बंद बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा अब पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों की अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड रिलैक्स ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है पैरों में दर्द हो रहा है ये सब चला जाएगा दर्द भग जाएगा कहीं एक दो वन अंगूठा पकड़ो अंगुली पकड़ो कोई सब टू वन टू अब एक Stretch your toes towards the floor in the front of you and inhale. Exhale and inhale. इसको भी 10 बार इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए अब इसे एक सर्कल बनाइए वन टू थ्री फोर फाइव अदर डायरेक्शन वन टू थ्री फोर फाइव पैर पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए एक और धीरे धीरे आगे झुकिए जितना झुक सके अंगूठे पकड़िए पैरों के

जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे, एक श्वास लीजिए, दो श्वास निकालिए, तीन श्वास लीजिए ऊपर, चार श्वास जोड़िए और अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए, जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना, एक दो चार स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज, जो एक मुट्ठी बांधिए खोलिए, दो यस नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा, उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है, वाह। अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में, अरे वाह। अब इसको बंद करें और खोले, मुट्ठी को बंद करें और खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। भाई देखो, खाने का बढ़िया हो तब मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी, इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा देखिए हाथ को, लुक टू योर पाम, सीधा बैठो ही, हाँ, नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस, एंड नाउ ओनली ओपन द पाम द लेफ्ट हैंड एंड लुक टू योर पाम एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, बट राइट हैंड इज होल्डिंग योर रिस्ट। देखिए आपका हाथ बिल्कुल लुक्स लाइक ए पेल। अब देखिए हाथ को और देखिए, अंगुलियों को देखिए, लुक योर फिंगर्स, लुक योर पाम्स, एंड नाउ release your right hand and look to palm, what's happening? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने, तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए।

0: रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखाएं हैं, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए कहां है उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स एंड नाउ व्हेन आई से थ्री वन देन यू विल रिलीज थ्री टू वन। हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो देखिए अब आपके हाथ जो हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस, डू इट लाइक दिस। जो ऐसा करोगे तो क्या था आपके हाथों के अंदर में एक चमत्कार बता देता हूँ। चमत्कार बता दे वहां क्या आएगी तो महाराज जी थोड़ा बहुत चमत्कार करें। ठीक है, चमत्कार को
1: नमस्कार।
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं। हाथों नाउ मिरेकल, नाउ यू विल हैव ए मिरेकल। यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वांट, सिट इन योगा पोस्चर, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एनी आसन वेर यू फील कंफर्टेबल। अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, लुक बोथ पाम्स। हाँ, दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है। अच्छा, एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है। अरे हाँ, वो तो जाना चाहिए, लक्ष्मी चंचल है। पानी तो चलता भला पड़ा गंदेला होए। वाह भाई वाह। अब ऐसे करिए हाथों को। अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग, जस्ट लुक लाइक दैट। नाउ आई वॉन्ट दैट यू हैव 1000 times मोर टिकलिंग और लाइक ए नीडल्स गोइंग थ्रू योर पाम्स दैट वी शुड फोल्ड योर हैंड्स। Fold your hands and now rub the palms

वेरी गुड. अब ऐसे 1 इंच दूर रखो. अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं? ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है. और ऐसा करिए धीरे धीरे. वो प्रेशर आता है ना, मैग्नेट. और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम. देयर इज नो मैग्नेट, वेयर इज गॉन. सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है. कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा. या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं. तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी.